का सोनम फुनचोगो सलखने लुजिक यांग तेस्तिंग ने ताशी स्पल्डोन तंग टोपागुने सलखने जाप्री लुरिक शंगा तंग फेदिका फिल्म लुरिक शंगा तंग स्कर्मांगा चुंगा इका आजे डिग्रीम गोने स्कोरगुन फितोगो चुचो टुगिका आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तंग अंग्रेजी सिनांगा सुलगुन टुक तंग स्कर्मा चुका गम्यूल पे स्कर्लोन डिग्रीम साना सदिन ये डिग्री में नंगा स्कोन ला नंगलस senanga roksa cheskartun in khantang delte tamdel yang ena dikri menanga skujab tsiring dol kartang yampu lagles na sok zachis tang delte tiwati lansana sadin degrim pulkan konchok tashi degrim me kodik chat khan sonamang chu tuk tangs karma jip chu ka magme khok tong gune fe dikrim penanga diringe charange film magazine sana zadin degrim pulkan tsiring konchok don tangs karma chong ekala ladak sananga na sul tang del chat lon tang pedika tinless ochir tang tsiring choruli salkhane lurek लोन तंग्स कर्मा जीपचुका आकाशवाणी श्रीनगर ने उड़ते नंगाना सुल्तंग तपसरा सानी चुचोत रिक्या देका रिक्जुंग स्थे डिग्रिम साना जादिन डिग्रिम फुला जाद खान गेशे सुर्टिम थार्चिन रिक्या तंग फेदेका जिगमे छोंडोल तंग टोपागुने सलखने युल्तोने लुरिक रिक्या तंग्स कर्मा जीपचु जाएका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार संध्या न्यूज 8 9 यांग तेस्तिंग ने उड़ते नंगाना सुलगुन डिग्रिम निस्पेस्तिंग जुगपेका दिरिंग सानी चुचोत उर्गु तंग फेदेका दंग चोकलमसारी धर्मा सेंटर एनांगा लद्दाख से यूले नंगा नांगछो से नजबाब से स्कोरला निंचिगे डोलिंग जिग स्क्योतेन पिन स्कोरला रेडियो रिपोर्ट डिग्रिम साना जातेन डिग्रिम फुलकान रिक्सिन नोरपो कासे तयुगुनेन पिन गजे दिरिंगी में डिग्रिम गुने स्कोर कोन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे।

0: विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
7: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों

0: की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पद्मा दोर्जी तंग ठोपागुनी सलखने ईशुंग लोगुन सनकन लनगे से आकाशवाणी लेने सनिंजिक तंग।

0: Naksangi sharangi filmi lurik sanajats ngashi akashwani leli shunjiktan sngato go chuchot gu tang skarma chip chu changa chadu kasata JK bank ke chindak chat khani dekrim JNK bank dari sanajat
1: All India Radio के श्रीनगर जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम JK Bank

0: सबब ऐसे उजाले नहीं होते घर में, माँ के चेहरे की चमक होती है दीवारों में। वो लफ्ज जिसमें पूरी कायनात की मोहब्बत सिमट आती है, वो हस्ती जो खुद धूप में जलकर अपनी औलाद के लिए साया बनती है, वो रिश्ता जो दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है, एक माँ का रिश्ता होता है। आज मदर्स डे पर हम माँ की इस अजीम हस्ती को सलाम अकीदत पेश करते हैं और हर माँ को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। माँ की इन्हीं खूबसूरत खसाइल के जज्बे से लबरेज आपके अपने इदारे जम्मू कश्मीर बैंक के वीकली रेडियो ब्रॉडकास्ट के 10 मई 2026 के शुमारे में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: प्रोग्राम की शुरुआत हस्बे मामूल आइए करते हैं इदारिया से।
0: पहाड़ों की खामोशियों से लेकर हसीन वादियों की रौनकों तक, चिनार की ठंडी छाओं से लेकर लद्दाख की बुलंद चोटियों तक, जम्मू के बासमती खेतों से लेकर कश्मीरी सेब के बागानों तक, एक रिश्ता, एक एतमाद, एक भरोसा बरसों से कायम है और उस भरोसे का नाम है जम्मू कश्मीर बैंक।
1: दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक के सालाना माली नतीजे का ऐलान किया गया और हस्बे तवक्का बैंक ने तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद अपना आज तक का सबसे ज्यादा सालाना प्रॉफिट दर्ज किया। 2363 करोड़ रुपए का मुनाफा महज एक फिगर नहीं है, बल्कि उस मजबूत रिश्ते और उस ताल्लुक की कहानी है जो इस बैंक का अपने साथ जुड़े हर शख्स के साथ कायम है। ये एक तारीखी लम्हा है। बैंक पिछले 4 साल से लगातार शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और हर नए साल एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिससे वो

0: अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर आने वाले सालों के लिए अपना सफर मजीद चैलेंजिंग बना रहा है। अपने आप को चुनौती देना आसान नहीं होता, लेकिन अपने परफॉर्मेंस बार्स को बहुत ऊंचा कर देना और उन्हें हासिल करना जम्मू कश्मीर बैंक के DNA में शामिल है। बैंक का मजमुई कारोबार 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसके लिए बैंक को हर समत से पजीराई हासिल हो रही है। एक ऐसे वक्त में जब खत्ते जम्मू कश्मीर पूरे साल गुनागुन मुश्किलात से दोचार रहा, तो ऐसे वक्त में बैंक की इस शानदार कारकर्दगी को हौसले, हिम्मत और निगाह बुलंदी के तनाजुर में देखते हुए आला मकाम हासिल है। बैंक के MD व CEO अमिताभ चैटर्जी ने इन तारीखी नतीज को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और अवामी विश्वास को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का मौजिब करार दिया। उन्होंने बैंक के 12,500 मुलाजमीन की मेहनत शायका को सलाम पेश करते हुए कहा कि बैंक का विशाल वर्कफोर्स जब ठान लेता है तो कोई भी मंजिल नाकाबले हुसूल नहीं रहती। बैंक ने गुज़श्ता माली साल में जो कामयाबियां हासिल की वो महज एक मालियाती कामयाबी नहीं, बल्कि उन लाखों ख्वाबों की कामयाबी है जो इस बैंक के जरिए परवान चढ़ते हैं। ये उस किसान की कामयाबी है जो अपनी जमीन पे मेहनत करता है। ये उस नौजवान का हौसला है जो कारोबार शुरू करना चाहता है। ये उस माँ की दुआओं का असर है जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। ये आदादोशुमार सिर्फ तरक्की नहीं दिखाते, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि लोगों का एतमाद इस बैंक पर रोज बरोज साल दर साल मजीद मजबूत और मजीद मुस्तहकम होता जा रहा है। ये उस एतमाद की मजबूती है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने अपने इस इदारे पर बरसों से कायम रखा है। लोगों के साथ हमारा ताल्लुक बैंक अकाउंट्स तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक दिलों का है, और जब रिश्ते जज्बाती हों तो कामयाबी हुदूद की कैद से बालातर होती है। MD और CEO का मानना है कि हमारे साथ जुड़े लोगों के भरपूर तआवुन से हम अगले 3 साल में अपना कारोबार दोगुना करने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए अब बैंक के मुलाजमीन ग्राहकों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि ग्राहकों के पास जा जाकर बिजनेस बढ़ाने के प्रयास करेंगे और अपनी कोर टेरिटरी में बैंक के बिजनेस की शरह को बेहतर बनाएंगे, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की हमारी ब्रांचेस भी अब मजीद सूरत के साथ कारोबारी अहदाफ को हासिल करने के लिए तगोदो करेंगे, ताकि बैंक अपनी रीजनल पहचान से आगे बढ़कर एक मजबूत नेशनल बैंक के रूप में पूरे मुल्क में जाना और माना जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा इस साल बैंक पूरे मुल्क में भी नई शाखें खोलेगा और स्टाफ शॉर्टेज की शिकायत का इजाला करने के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भी जल्द की जाएगी। बैंक के कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी जज्बे को दवाम बख्शते हुए बैंक ने गुज़श्ता 3 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए की खतीर रकम तालीम, सेहत, माहौलियात, स्किल डेवलपमेंट वगैरह शोबों में सर्फ किए और अवामी सहूलियात में खातिर ख्वाह इजाफे का बायस बना। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोशिशों में सूरत के साथ इस साल भी कई अहम अवामी तरजीहाती प्रोजेक्ट्स को दरदस्त लिया जाएगा। MD और CEO ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की खदमत और उन्हें समाजी और माशी तौर पर खुद मुख्तार और तरक्की पसंद बनाना हमारी अवलीन तरजीह थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि बैंक अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को मजीद मुस्तहकम बनाएगा, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए ग्राहक वर्ल्ड क्लास बैंकिंग प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास फीचर्स के साथ एंजॉय कर सकें। अपने एक रेडियाई पैगाम में MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने कहा,
1: जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सभी को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉयज को दिल से बधाई देता हूं। 2,363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीम वर्क और बेहतर स्ट्रेटेजीज का नतीजा है। आप इसी तरह J&K बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। ना केवल यहाँ, बल्कि आपका बैंक पूरे देश में अपनी पहचान और मजबूती को और आगे बढ़ाएगा।
2: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो JK बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल

0: करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं। नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाखा से राबता करें और इन सहूलियात से फायदा उठाएं।
1: दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान एक अहम एमओयू पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पुलिस एहलकारों, एसपीओज और उनके अहल खाना के लिए फलाही और माली तहफ़ की जारी सहूलियात को मजीद वसत दी गई है। इस एडेंडम टू एमओयू पर जेएनके पुलिस के डीजीपी नलीन प्रभात और बैंक के एमडी व सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने दस्तखत किए, जबकि इस दौरान पुलिस और बैंक के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें स्पेशल डीजी सईद जावेद मुज्तबा गिलानी, एडी जीपी हेडक्वार्टर्स मनीष सिन्हा, बैंक के चीफ जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन और जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा शामिल थे। इस माहिदे के तहत पुलिस एहलकारों को अब न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी, बल्कि दौरान ड्यूटी शहादत की सूरत में खसूसी माली तहफ़, बच्चों की आला तालीम के लिए मावनत, बच्चों की शादी के लिए इमदाद, एम्बुलेंस सहूलियात वगैरह भी शामिल हैं। बैंक के एमडी व सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी हैं और बैंक उनकी कुर्बानियों के एतराफ में उनके अहल खाना की इज्जत, फलाह और माली तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। डीजीपी नलीन प्रभात ने भी जेके बैंक की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ये इश्तराक दोनों इदारों की उस मुश्तरका सोच की अक्कासी करता है, जिसका मकसद उन अहलकारों और खानदानों को मजबूत सहारा फराहम करना है जो कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं। एमओयू के मुताबिक पुलिस अहलकारों को जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट्स, मुफ्त डिजिटल बैंकिंग, कंसेशनल लोन रेट्स, प्रोसेसिंग फी में छूट, फौरी तौर पर कर्जों की सहूलियात, कंसेशन ऑन लॉकर रेट्स जैसी मुतअद्दिद आसानियां भी बदस्तूर हासिल होंगी। दोस्तों, ये इकदाम एक इंस्टीट्यूशनल टाई अप ही नहीं, बल्कि खामोश कुर्बानियों को सलाम पेश करने की एक बामानी कोशिश है, जिनकी बदौलत यहाँ अमनो अमान की फजा कायम है।
0: दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से फाइनेंशियल फ्रॉड्स में म्यूल अकाउंट्स का बार बार जिक्र आता है, और क्या है ये म्यूल अकाउंट्स और इनके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए, जानने के लिए आज हमने दावत दी है बैंक के जनरल मैनेजर बराए केवाईसी एएमएल और ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर पीर मसूद साहब को। सर, जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया।
0: जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
2: देखिए जावेद साहब, ये म्यूल अकाउंट, म्यूल तो एक अंग्रेजी लफ्ज है, इसका मतलब है गद्दा
0: जी।
2: म्यूल अकाउंट ये हो गया कि जिस अकाउंट को गद्दे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए
0: जी।
2: गद्दा तो लाखों का बोल्ड आता है, लेकिन खुद को तो वही थोड़ा बहुत चारा मिलता है
0: जी।
2: बराबर यही मामला है कुछ अकाउंट्स के साथ, कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ, जिसको कौमी सतह पे आज पे बड़ा मसला है बैंक्स के लिए
0: जी,
2: कि कुछ जो समाज दुश्मन अनासिर होते हैं, तो लोगों का पैसा चोरी करते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड के जरिए करें, चाहे वो और किसी तरीके से करें,
0: या मनी लॉन्ड्रिंग,
2: फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करें, वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू ये पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे आते हैं कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए फिर ढूंढना मुश्किल होता है कि पैसा आया कहां और गया कहां,
0: और इसका एंड यूज क्या हुआ,
2: और उसका एंड यूज क्या हुआ। और दूसरा यह है कि फिर ये पैसा रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मेरा अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में आते हैं, चलो अगर ये लाख रुपए ट्रांसफर करता मुझे भी 2000 मिलेंगे। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन ये ट्रैप हो जाते हैं और वो अपने अकाउंट की डिटेल इन समाज दुश्मन अनासिर के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इनके ये अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं।
0: सर, एक अहम बात जानना चाहेंगे कि अगर किसी शख्स का अकाउंट एज म्यूल यूज हो रहा है, चाहे उसको पता है या नहीं है, कानूनी तौर पे उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है?
2: अगर कोई बंदा डिलिबरेटली करता है, उससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये काम छोड़ दीजिए। और अगर कोई बंदा अब बदकिस्मती से अननोइंगली मुलव्वस हो चुका किसी और वजह से, उसको भी इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाना चाहिए और नेशनल लेवल पर एक हेल्पलाइन है 1930, वहां रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा अकाउंट इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आज की डेट में अगर ज्यादा देखेंगे जो ये म्यूल अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं और ये जो कौम दुश्मन अनासिर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो यूपीआई, आईएमपीएस और एमपी जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस्तेदा तमाम लोगों से, तमाम ग्राहकों से यही है, चाहे उनका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है या किसी और बैंक में है, कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर किसी वक्त अब आपके अकाउंट

0: में पैसा आ ही जाता है, तो आपको इमीडिएटली अपने ब्रांच में जाना चाहिए, वहां पर उनको बोलना चाहिए कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी गलत तरीके से आए हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए और वो पैसा आपको आगे कहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको नेशनल लेवल पे जो हेल्पलाइन है 1930 वहां कॉल करना चाहिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह पैसा आया हुआ है, ये जरा देख लीजिए क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो।
1: पीर मसूद साहब, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, उसके अहम नुकात को आवाम के लिए बिल्कुल आसान जुबान में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
3: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर पूछा था।
1: इस सवाल का सही जवाब है 1930 यानी 1930।
3: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से टंगमर्ग बारामूला की मुबीना अख्तर, जम्मू डिवीजन से उधमपुर के श्याम सिंह राय और लद्दाख से शंकर लेह के कर्मा कंगला थे।
3: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
3: दोस्तों, आपको बताना होगा कि माली साल 2025-26 में J&K बैंक ने कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया।
1: आपके जवाब हमें 16 मई 2026 शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। याद रहे, अपने जवाब के हमरा अपना नाम, पता, 16-डिजिट अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें।
3: तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
1: 1-800-890-2122
3: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
1: www.jkb.bank.in।
4: अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
5: দাসঙ্গে সরঙ্গে JK ব্যাংক ডায়রি চিন্তাকচাত খানে দেখ্রিম J&K ব্যাংক ডায়রি সানাজাত সঙ্গাজে আকাশবাণী লেনে চুঞ্জিকতান সঙ্গা তো সুচোদ অর্চুছাদক কাসাতা ঠু গুনে দেখ্রিম ঠুগি স্কেচল সানাজাত এ দেখ্রিম এডাঙ্গা লোক ঠুকাক লেন খান গুন সুলটি মিয়াংচান স্তানজিন ছুজগুন জিকমেদ দেগেল জিকমেদ নুরপু স্তানজিন সোতে তাং স্তানজিন লাঞ্জিসগুন ইয়াং ইস্তিংনে এনা দেখ্রিম এডাঙ্গা গভর্নমেন্ট মেডেল স্কুল স্কিমে লোক ঠুকুনে ছোকসনে দেখ্রিম না ছোক শেখ সানাজাদিন ডিগ্রিম ফুলকান স্তানজিন গুটুপ ডিগ্রিমে কোটিক জাতখান সেরিং চরল।

0: धन्यवाद।
1: संजन गावा नास पोयम जी संचेस ला फुलिन।
2: गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजन गावा। आई रीड इन क्लास सेकेंड। टुडे आई विल टेल यू अबाउट ट्रैफिक लाइट। ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट ऑन द कॉर्नर इट इज शाइनिंग ब्राइट। रेड लाइट रेड लाइट रेड मींस स्टॉप। येलो लाइट येलो लाइट येलो मीन्स वेट। ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन मीन्स गो। ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट ऑन द कॉर्नर इट इज शाइनिंग ब्राइट। थैंक यू।
1: इस दिन नमी पर मंगल तांतानिन पलरों नास लुजिक संचेस ला पुलिन।
3: जिले ये मिंगार संचेस पलरों इनले
4: ये मिंगा मिपा मंगल इनले
3: दिन अचंग इसका लुजिक संचेस ला पुलिन ले।

0: tu dzieci. Istig na zindani s piestanin gawatan jingme tangas nas kavita jik sanchez lapuli.
1: Jile, mera nam jingme tangase.
2: मेरा नाम संजन गावा है।
1: तो आज हम दोनों मिलकर एक कविता सुनाने जा रहे हैं। नन्ना पौधा स्कूल

में एक नन्ना पौधा, कुम लाया मुरझाया पौधा, भूखा प्यासा से रोता पौधा। रानी बोली सुन सुन सुन, मोहन सुन मोती सुन, नन्ना पौधा रूठा है, जाने कब से भूखा है, पानी बिना ये सूखा है, हम सब इसको पानी दे, सन सन सन सन सन सन। रानी घर से लाई पानी, सबने उसे पिलाया पानी, पानी नन्ना पौधा खड़ा।

दिल का मेल बॉक्स तो बहुत पहले से ही खुल गया है। ऐसा लगा कि हम शुरू करेंगे और नाम बोलेंगे, लेकिन दोस्तों को तो नंबर और ईमेल आईडी पता ही है, इसलिए झड़ी लग गई। समझिए कि बरसात हो गई मैसेजेस की। 9868687853 पर व्हाट्सएप पर इतनी फरमाइशें आ रही हैं, और साथ ही FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर भी बहुत सी फरमाइशें आ रही हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।

0: देवभूमि की आपने बात की भंडारी जी, लेकिन कला भूमि भी तो है उत्तराखंड। बड़े बड़े चित्रकार हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप खुद बहुत अच्छी चित्रकला में निपुण है, तो कुछ चित्रकला के बारे में बताइए जो कि उत्तराखंड की विरासत है, वहाँ की कला संस्कृति की पहचान है।
1: देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। अमूमन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम हर एक अपने भाषण में भी और बातचीत में भी दो चीज बोलते हैं कि ये देवभूमि है, वीरभूमि है। निश्चित रूप से देवभूमि है, जितने भी हमारे धाम है सब यहाँ पर है, और उसके बाद वीरभूमि है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में हमारे 1,00,000 सैनिक सेवारत हैं और 1,30,000 सेवानिवृत्त हैं
0: जी।
1: तो हर घर में आज ऐसा कोई घर नहीं उत्तराखंड पहाड़ों में आप जाएंगे जहाँ एक घर में एक व्यक्ति फौज में नहीं है।
0: जरूर होगा जी,
1: फौज में हो, असम राइफल में हो, या सीपीओ में हो, या जहां भी हो। तो इसलिए हमारा जो फैमिली है उत्तराखंड की, वो एक सैनिक फैमिली है
0: जी, फौजी फैमिली है।
1: हाँ, एक वो है। लेकिन एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। हम वीरभूमि देवभूमि नहीं, हम कला भूमि भी। एक ऐसी चितेरे ने श्रीनगर गढ़वाल में जन्म लिया 1745-1750 में, जिसका नाम मौला राम था और जिनको संरक्षण दिया हमारे गढ़वाल के राजा खानदान ने। आज देखिए शाह जो हैं हमारे, जो टेरी में स्थापित हुए, पहले उनका जो किंगडम थी पौड़ी में थी
0: जी,
1: तो ये मौला राम को संरक्षण देने वाले वही थे। और उनका एक आर्ट है जिसको बोलते हैं गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये बसोली पेंटिंग से और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक शाखा है
0: जी।
1: इसके ऊपर आपने एक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का भी नाम सुना होगा, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे
0: जी।
1: तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनके ऊपर बहुत शोध कार्य किया है और भारतीय सरकार ने इनके ऊपर एक किताब छापी है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग का नाम लिखा हुआ है। और इसकी मिनिएचर पेंटिंग मैंने लंदन में बहुत देखी, किंग एडवर्ड म्यूजियम में, और हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी में वहां भी है, और सबसे ज्यादा मैंने मुकुंदी लाल जी के घर में देखी है जब मैं लंदन में था। खुद पोस्टिंग था, लेफ्टिनेंट था। बस दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जब 12-13 साल गोरखा लोगों का राज्य रहा गढ़वाल में, उन्होंने संरक्षण देना बंद कर दिया। 1815 में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस इलाके को लिया, तो वो पूरा संरक्षण ही समाप्त हो गया। दुर्भाग्यवश मौला राम का परिवार धीरे धीरे उजड़ गया, उनके लड़के भी विक्षिप्त हो गए, तो लोगों को आज बिल्कुल भूल गए
0: जी।
1: बल्कि मैं जब श्रीनगर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ तो लोगों को पता नहीं कि ऐसा विशिष्ट प्रतिभा के धनी मौला राम श्रीनगर गढ़वाल में उनकी पैदाइश है। तो मैं जहां भी बोलता हूँ, जब भी उत्तराखंड के बोलता हूँ, मैं हमेशा देवभूमि, वीरभूमि और कला भूमि
0: जी।
1: इसके अलावा आप हमारे देखेंगे हर चीज का आर्ट है। ये तो उनका मिनिएचर पेंटिंग है। आप देखिए गढ़वाल में और कुमाऊं में, दोनों क्षेत्रों में हर किस्म का आर्ट फेमस है।
0: चावल पीस कर और गेरू से जो रंगोलियां बनाई जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो अपने आप में ही एक कला है। और बहुत सारी मातृशक्ति हमारी गढ़वाल कुमाऊं की, उसमें बहुत निपुण है, सिद्ध हस्त है, और मैंने देखा है कि वो उसको स्वरोजगार के रूप में भी अपना रही है।
1: अभी हो रहा है, अभी उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सरकार की तरफ से भी काफी कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है और मातृशक्ति को भी काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा है और लोन भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इन चीजों को चलाने के लिए और भी व्यक्ति चाहिए। अभी जो लोग

सक्षम है, जो लोग बाहर हैं दाहिने बाएं, उनको एक मन में प्रण करना है कि भाई मैं जहां का भी रहने वाला हूं मैं कुछ दिन वापस जाऊंगा। अभी होता क्या है कि लोग आते हैं, गांव जाते हैं, कहते भाई हम पूजा करने जा रहे हैं, अब दो दिन के बाद वापस आ जाते हैं, तो उससे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये कैसे हो, क्या हो, ये हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूं कि जब आप नौकरी करते हैं, ठीक है नौकरी कर रहे हैं आप, उसके बाद प्रण करें कि आप वापस आप अपने रूट्स में जाएं, जिस माटी ने आपको इतना कुछ दिया है, आपका भी तो फर्ज बनता है आपको कुछ देना है।

0: आप कहाँ जाकर बसे हैं?
1: मेरा गांव जहाँ मैं अभी बसा हूँ वहाँ से 9 किलोमीटर है
0: जी,
1: 9 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में गाय है, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में बगीचा है, सब कुछ है।
0: कहाँ पर बसे हैं?
1: रानीखेत में।
0: अच्छा, हम बता दें सुनने वालों को कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी इस समय रानीखेत में रहते हैं और बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहते हैं, खेती करते हैं। कितनी गाय हैं आपके पास?
1: अभी तो 4 गाय हैं।
0: 4 गाय हैं,
1: बकरी भी है।
0: वाह, मतलब प्रकृति के जिसे कहते हैं बिल्कुल बीचों बीच है और खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, सर्दियों का आनंद लेते हैं वहाँ पर। पहाड़ों में तो गर्मियाँ होती ही नहीं है, बड़ा सुहाना मौसम है।
1: एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको रश्मि जी, जहाँ मेरा घर है वहाँ से आप 350 किलोमीटर की लंबाई के हिमालय श्रृंखला देखते हैं।
0: अच्छा,
1: मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एंडीज जो है साउथ अमेरिका में, इतनी लंबी हिमालय श्रृंखला जो यहाँ की है कहीं नहीं दिखाई देती है। 21 पीक्स ऑफ मेजर पीक्स ऑफ इंडिया यू कैन सी फ्रॉम माय हाउस। तो जब मैं सुबह उठता हूँ मैं सब उन्हीं को उठकर प्रणाम करता हूँ, नंदा देवी को, त्रिशूल को, नंदा घुंटी को, नंदा को।

0: को, पंचचूली को, क्या क्या बताऊं मैं, 21 मेजर पीक्स हैं। मेजर पीक का मतलब 20,000 फुट से ऊंची,
1: बर्फ से ढकी हुई।
0: जी, तो ऐसा लगता है कि आप एक थैला ले जाओ और वहां से अपने थैले में चांदी भर के ले आओ और ले जाओ।
1: क्या बात है, कितने भाग्यशाली हैं आप कि कितने लोग होंगे हमारे देश में खिड़की से जब झांके तो एक पूरी सुंदर सी पर्वत श्रृंखला, हरी भरी वसुंधरा जिसे हम गीतों में सुनते हैं और कल्पना करते हैं, वो कल्पना आप जीवन में जी रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये कल्पना को हम सब भी उतार सकते हैं जो उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड से निकले हैं, वो वापस आए तो मुझे लगता है इसकी जरूरत है कि हम लोग वापस जाएं और अपनी उस धरा को जिसने हमें पाला है, पोषण दिया है, कहीं ना कहीं अपने अनुभव दें, ज्ञान दें, वहां रहें, वहां के जीवन को बेहतर बनाने में काम करें। और मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ हुआ है, कोरोना में बहुत लोग वापस गए हैं, उन्हें थोड़ा समझ में भी आया है। एक कठिनाई इसमें जो आती है वो है शिक्षा की, रोजगार की और मेडिकल फैसिलिटी की, इसके लिए आप क्या देखते हैं?
0: जो आपने बात बताई बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्लेन इलाके वाला उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम विषम परिस्थितियों की बात करते हैं तो आप देखिए, आप उन इलाकों की बात करते हैं जैसे पिथौरागढ़, ऊपर का इलाका, पहाड़ी इलाका, चमोली का इलाका, उत्तरकाशी का इलाका, टेहरी का इलाका, पौड़ी का इलाका। दुर्भाग्यवश वहां से चूंकि पलायन बहुत हुआ है और दो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहां से बहुत पलायन हुआ है, पौड़ी और अल्मोड़ा, अभी भी वहां पर अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन और रोजगार, ये प्रॉब्लम अभी है। शायद ये एक भारी कारण रहा कि वहां से पलायन निरंतर आज भी चल रहा है। राज्य कर रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, कुछ हो रहा है, लेकिन तभी मैंने आपको बोला, आपने शायद नोट किया होगा, मैंने कहा कि आज हम लोग जिस स्थिति में, अगर डॉक्टर हैं तो उनको ये भी सोचना है कि मैं वापस जाऊं, मैं कुछ शुरू करूं वहां पर, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट करना बहुत आवश्यक है। और ये मैंने एक बड़ी भारी कमजोरी देखी अपने इतने साल रहने में, हमारा एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की कमी है, इसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बिल्कुल नगण्य है वहां पर। जब तक आप सब मिलजुल के कोई भी आप इंडस्ट्री शुरू करें, कुछ भी करें, आज सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन मिलजुल के आप काम करें।
1: स्वरोजगार की क्या दिशा और दशा है अभी फिलहाल वहाँ पर?
0: रोजगार की दशा दिशा थोड़ी मैं समझता हूँ, थोड़ी इसमें भी कमजोरी है। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब प्लेन्स में है, ऊपर पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ नहीं पाई, और वहां का जैसा आपने बताया वातावरण इतना साफ है, वहां बड़ी इंडस्ट्री लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं काफी समय तक यूरोप में रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में रहा हूँ, वहां पर आपको ऐसी इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जैसे टीवी पार्ट्स बनाने हैं, घड़ियां बनानी है। अब स्विट्जरलैंड में आप देखिए हर घर में एक एक पार्ट बनाते हैं
1: जी,
0: आप चिप्स बनाते हैं, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकते? वहाँ तो बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली, धूल धड़क का कुछ है ही नहीं।
1: मैंने देखा कि वहाँ पर सौर ऊर्जा पर बहुत अब जोर दिखाई दिया, और ये भी देखा कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी ऐसे उद्यमी आए हैं जिन्होंने वहाँ पे सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए हैं। इस समय तो प्राकृतिक फार्मिंग पे बड़ा जोर है, पूरा विश्व, हमारा अपना देश प्राकृतिक खेती है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बहुत जोर है, और उत्तराखंड तो खुद ही पूरा ऑर्गेनिक है, कहते ना छुआ नहीं रसायनों ने जिसे, वहाँ की धरती बिल्कुल शुद्ध है, तो कहीं इस प्रकार के स्वरोजगार की भी जरूरत है जिसमें ब्रांडिंग होनी चाहिए।
0: मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ पर है
1: जी।
0: देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप कुछ भी कीजिए, हमारे आज पहाड़ में लोग हैं जो कि इस विषय में काफी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला है। सवाल ये है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहाड़ में इतना खराब है कि उत्पाद जो भी आपके दूरस्थ स्थान से, आप उसको ला नहीं सकते नीचे,
1: ला नहीं सकते। अच्छा, ये बहुत समस्या,
0: ये बड़ी भारी समस्या है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां आपने सौर ऊर्जा की बात की, मेरे घर में खुद लगे हैं सौर ऊर्जा के, उसमें क्या है कि मैं पिछले करीबन 15 साल से सब कुछ जो घर का पानी है वो गर्म होता है, बिजली पैदा करते हैं, वो ग्रिड में जाती है, उससे मुझे पैसा मिलता है
1: जी,
0: तो कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है। आज सब्सिडी भी दे रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर से वो डीसी बनती है, तो डीसी को एसी कन्वर्शन के भी प्लांट देते हैं वो, और उसको फिर आप मेन ग्रिड में दे देते हैं, तो वही ग्रिड जो है लोगों को बढ़ती है और उसका आपको पैसा मिलता है, तो ये अभी धीरे धीरे हो रहा है।
1: इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो चिप्स या घड़ी के छोटे छोटे कारखाने वहां लगाए जाने,
0: मतलब
1: चाहिए।
0: इस तरह के इको फ्रेंडली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं बोलता रहता हूँ सबको, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज जो हैं

0: पर्यटन की विशाल संभावनाएं हैं उत्तराखंड में।
1: पर्यटन में तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पर्यटन के नाम पर भी जैसे दुनिया भर के होम स्टे बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन होम स्टे में आप क्या लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं या बाहर वाले वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बड़ा विवाद है आजकल पहाड़ में
0: जी।
1: एक होटल लॉबी ने ये भी विवाद उठाया है कि अगर आप होम स्टे कर रहे हैं तो होम स्टे लोकल ही करने चाहिए ना, बाहर वाले आएंगे तो फिर लोकल वालों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ है नहीं अभी।
0: ये सब सोचने की जरूरत है,
1: एक बैलेंस की जरूरत है, और ये तब तक नहीं होगा कि जब तक

0: जमीन पर नहीं बैठेंगे।
1: मतलब योजनाएं इस प्रकार की हो, धरातल पर जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए उनके फायदे, और एक दृष्टिकोण हो विकास के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जैसा अनुभवी व्यक्ति वहां मौजूद है, जिसने कि उत्तराखंड प्रशासन में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप जो सेना की जो आपकी पृष्ठभूमि है, एक आपने प्रशासनिक वहां पे भी काम किया है, जो कारगिल का युद्ध था उस समय भी आप सेवारत थे, और उस समय तो प्रवक्ता के रूप में आपने हमें मालूम है काम किया है, और आज गोल्ड के स्टूडियो में जो आप आए हैं, इतना आपने समय दिया है हमें, तो हमें तो आपके जो अनुभव है, मन तो कर रहा है सुनते जाएं, पर घड़ी हमें कह रही है कि अब समय हो चला है। चलते चलते लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, अगर आप कुछ हमारे सुनने वालों को संदेश देना चाहेंगे तो कहें।
0: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैंने फौज ज्वाइन की तो मैं युवा था, मन से अभी भी युवा हूँ। भारतवर्ष का 64% हमारी जो जनसंख्या है युवा वर्ग की, तो आज भारत का भविष्य युवा के ऊपर आधारित है, और यही मेरा संदेश सबके लिए कि आज युवा को दशा और दिशा देने की आवश्यकता है, हर स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और घर घर में माता पिता का बड़ा भारी कर्तव्य है, उनको सांस्कारिक बनाए, उनको सांस्कृतिक की, अपने कहाँ के रहने वाले हैं उसमें गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: बहुत अच्छा संदेश, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी भाषा पर, संस्कृति पर, देश पर अगर गर्व होगा तो एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। तो रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार,
0: धन्यवाद।

दक्षिणेश्वर या आकाशवाणी दिल्ली ने एफ एम गोड़े डिग्री मन सन जाच मीडियम वेव किलो हर्ट सिक्स तो अपचुंग अक्सुम यंग ना मीटर्स निप गे गेचु के अपजे तंग शुजर गु यंग एफ एम मेगा हर्ट गया तंग चिक तंग शुजर चिगे कंग जे आकाशवाणी लेनी जुन चिक ताइन निमे चुचो चुंगे छादु कसता चुंगे स्तंपे चुक पा फेमिलु रिक सन जात इन अस्कुन ला रामपुर का लक्ष्मण फेमिलु लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार ने सन जात हिरोर सोमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लियांस्टिकन आर डी बर्मन

कसता मोहम्मद रफी सलकाने हम किसी से कम नहीं फेमिलो सनाजत मजरूर सुमसला यांस टेकन आर डी बर्मन।

0: दक्षिण इजराइल लुरिक सनाजत मजे आकाशवाणी लेनी जोत ये मिचु जोत चेक छा दुक कसता आकाशवाणी दिली ने स्कूल लाइन दिना यंग टेस्टिंग ने अंग्रेजी ना नसुल सनाजत
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ

0: है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
3: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Kargam, or TVK, St. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member house. According to a Lok Bhavan press release, the governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay in a social media post. Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 284 आशय 9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101 आशय 1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम.

जय हिंद फौज भाइयों, फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से गीत अलके याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में इश्क फिल्म से। राहत इंदौरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना इश्क है तुमसे फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाई सुनेंगे एतराज़ फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

0: in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस

0: का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीडीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु मुद्दों முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி ஷபத் லீ ஹே, இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रजित कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने

0: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में

3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कसता भूपेन हजारिकानी रुदाली फिल्मिलु सनजत गुलजारे सोम्सकानी लोयांस रिकन भूपेन हजारिका

फिल्म लोगन संकलन के से आकाशवाणी लेने संजिक ताइन कसता लता मंगेशकर ने स्वामी फिल्मिलो सनजात।

0: Dirimis penatori pitechuzot rnika la dasenanatul pitechuzot rnganas karmashnikas mon la concho standine salkanilu. Ya testing ni tsiring dorjetan topani salkanilu riksanazadin. Pitechuzot rngana pedika flemelori rnganas karmangachunga eka ngaji digrim goneskur. Tori pitechuzot rupnas karmashchuka gamul peskadlon digrim sanazadin. Tori se digrimina lubangi jange concho tsiring ni sanazadin digrim pulkan padma dolma ya digrim ekotik zatkan sonamachuk. Repito chuzo tuk dans karma jib chika mami ko tan dikrimina flemelo sanazatin dun nas karma chungi ka la dasen atsul ya testing ni delchat pito chuzo dun na petika tsring tashi salkani lorik sanazatin dun nas karma jib chika akashoni sirine kani udina natsul ya testing ni tapsira tore chan chuzo gedika pomogoni fedikrim sanazatin pomejiksten tore se dikrimina ngijrangi skujab stanzin otsal tangya po Divatilan degrim jik sanazadin. Degrim pulkan gun stanzin rol matan jik median rol and degrim ekotik zatkan sering chorol. Tsani chuzot gyanam pedika Gulam Husani salkani balti gazalik sanazadin. Tore tsani chuzot gunam pedika rigzin la rol tantopane salkani ladaxilurik sanazadin. Kasate gunin pin ngaji dinin degrim nispatan tore singimi degrim guniskurgun. Ngaji akashwani lenijot. Pitogo chuzo tukchatu kasata akashwani delines kon la hindi antesting ni anrizina natsul gun sanazad.
1: Akashwani samachar ke saath main Jaya Bharti. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुँच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी

0: कवरेज पर फोकस किया। अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलक वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
0: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारे

आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट सेरिंग कुंचो और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं फौजी भाइयों का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्म मैगजीन। श्रोताओं, जीवन बड़ा अजीब होता है। कई बार उसकी परतों में से हम जिस रंग को खोजते हैं वह नहीं निकलता, पर कोई ऐसा रंग निकल आता है जो उससे भी अधिक खूबसूरत होता है। ऐसे ही खूबसूरत रही बॉलीवुड एक्ट्रेस व सन 2000 की मिस यूनिवर्स लारा दत्ता की बॉलीवुड सफर। जी हाँ दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे एक्ट्रेस लारा दत्ता की बॉलीवुड सफर पर और सुनेंगे उन्हीं की फिल्मों के कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स।

बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल सन 1978 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता एलके दत्ता इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद से रिटायर हुए हैं। इनकी फैमिली सन 1981 में बेंगलुरु शिफ्ट हुए, वहीं से इन्होंने स्कूलिंग की। लारा दत्ता

ने ग्लैमर की दुनिया में अपना पहला कदम सन 1995 में ग्लैट्रेस मैनहोन एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट से किए। इस कॉन्टेस्ट में उन्हें जीत ने उन्हें सन 1997 की मिस इंटरकॉन्टिनेंटल में एंट्री करवा दी। इसके बाद इन्होंने सन 1997 में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की खिताब को भी अपने नाम किया। लारा ने सन 2000 में फेमिना मिस इंडिया व इसी साल साइप्रस में हुए मिस यूनिवर्स को भी अपने नाम किया। वह यह खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बनी। पर बॉलीवुड में इनकी एंट्री होती है सन 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज से। इस फिल्म में वह एक्टर अक्षय कुमार के संग नजर आए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और लारा को अपनी पहली ही फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया। श्रोताओं, इसी भी समय हो गया है कार्यक्रम के अगले गाने का। इसी फिल्म से उदित नारायण व अलका याग्निक की आवाजों में।

अंदाज के सक्सेस के बाद इनकी लगातार 3 फिल्में रिलीज हुई, खाकी, मस्ती व बर्दाश्त। मस्ती को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कलेक्शन के साथ साथ इस फिल्म के गाने एक लंबे समय पर ट्रेंडिंग नंबर पर रही। बॉलीवुड में इन्हें असली पहचान मिली फिल्म नो एंट्री से। इस फिल्म में वह एक्टर अनिल कपूर के अपोजिट काजल की किरदार में नजर आए। फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्म रही और उन्हें इस फिल्म के लिए एफआई अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला।

सन 2006 में एक्ट्रेस लारा दत्ता की दो फिल्में रिलीज हुई, जिंदा व भागम भाग। इसके बाद वह सन 2007 में फिल्म झूम बराबर झूम में एक डबल रोल के किरदार में अभिषेक बच्चन के अपोजिट नजर आए। इसके बाद वह उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म पार्टनर में नजर आई। फिल्म सुपरहिट रही और इसकी फिल्मों के गानों को भला कौन भूल सकता है। क्यों ना इसे भी सुनते हैं, कार्यक्रम का यह अगला गाना। इसी फिल्म से राहत फतेह अली खान व महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में

सन 2010 एक्ट्रेस लारा दत्ता के लिए एक यादगार साल रहा। फिल्म थी हाउसफुल। फिल्म एक अच्छे कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उन्हें अपने दमदार एक्टिंग के लिए जी सिने अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। सन 2021 में लारा को फिल्म बेल बॉटम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार को निभाने का भी मौका मिला। फिल्म के सिवाय लारा ने अनेक बार इंटरनेशनल फिल्म

एकेडमी अवार्ड्स व आईफा अवार्ड्स को भी होस्ट करते हुए नजर आ चुके हैं। सन 2010 में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने इंडियन टेनिस स्टार महेश भूपति संग शादी की। इनके अब एक डॉटर भी है। फिल्मों के साथ साथ एक्ट्रेस लारा दत्ता ने अनेकों सोशल वॉक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन निभाते हुए नजर आए। सन 2011 में वह अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए किक फॉर अ चेंज कैंपेन चलाए। इसके साथ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्रीनेटल योगा एक्सरसाइज को यूट्यूब पर चलाए और इसी साल इन्होंने यूनेफा गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए। वह कहती है कि कोई भी सेलिब्रिटी अपनी छवि से समाज में अनेक तरह से कंट्रीब्यूशन जोड़ सकते हैं और उन्हें यूनाइटेड नेशन की इस रोल की हमेशा से इंतज़ार था।

श्रोताओं, समय की कमी के कारण आज के फिल्म मैगजीन कार्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे जल्द किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का यह लास्ट सॉन्ग कुणाल गांजावाला व सुनिधि चौहान की आवाजों में।

0: chichok stang galkabika khat nganpa lebin yot khan skola shada jate no yang khoi drugs choksi duksas ne thakringa dukches la thugun la lapcha sala jate no ituskun la drugs lenches ne mitseka khat nganpa lebkan junuri ge nyamnyong tang ituksas ne thakringa dukches la jang thopa gulla hago sala jate no illa school shultus sheram mixche chospe thipa tang gerkan chikme tang jukste yote no yang enna rings la sub inspector tamchu se ikane khat ngan pa kazuga lebin te thoga thugu junu gunla hagu salenchik isuk mala chats
1: ए यंग खची की उत्तर ना थी जैसे फंक्शन वंक्शन अच्छा नो सेलिब्रेशन जो है खची बर्थडे जो है या पार्टी वर्टी जो है चीज जो है ना जैसे ना तम बियर थोनो बियर चिंगी चिंग स्पार चुपा खची या न्यू होंगे तो शिफ्ट टेस्ट होता है और ना तो है इन्हें ड्रास हों तब भी शिफ्ट टेस्ट होता है दिने पूरे पूरे एडिशन चेंज चेंज चेंज दिने मां आदु चेंज चेंज दिने दिने दफसा ना थी राधा सिंह को ट्रेनिंग ची दूते ना खास करके ना थी यूथ ठुबु संगा पिलो असी करो मां क्या ना थी ड्रग ड्रग कंज्यूम जो कन संगा यूथ न्यूनो पिलो असी कर 10, 12, then a first year sit down. Jessing is just my example, Jitana, Najit, Inna Lu, Dosa, Chevy Sinampa, Tuguma, Hong Kong, Sundi, Kaun, Chandigarh, Sila, Delhi, Sila. Recently, the name of Tangsama is doing a killer made in a fire. But you ever do cheat to Kony and Petran Puchi to the Naboloka, Aka, Delhi, to Chandigarh, to do. Chun gram used a crown conjunction. This thing is trust a radio. Our Nati Ladaska to the mounted director, Madame Ladaska to. Ladaska to choose an Akoni Gomati to Romati to Sikan someone in the theater of Tula. You tons are just in addition channel to say. Addition chin and bunchet? Nene, Pony next in another addition Lampuji Chacha telling your chest. Then it chun gram ready after money come out on the
0: It is no to drugs this the youth can car sticker gun hago spelches la ghost de salteno is la school shule sang school la sherap mixche chosok sokspe chosne zang nima rimsle lobtu kun la nang chosse lobjung salen youth can thuku gun dering stock tuba trakung khauche gun patang spitu gun pa gune nashal la khera jateno kasata nasul khak changul dabste sanajat dering phyang enanga Jerry Larchuk Stong is Gatsuk Jesetaldic at Zateno, Ivegozuk Stendel, Ladaguzungas de Sheshkonjan Bezateno, during Nepala, Joglam Sardarma Centerica, Rimboche Langas Tospe Gedun Tunmogone, Molam Tosa Zateno, Young National New Neurologist Forum, NNFA India. Gagar Gangpenanga, Chapskeskan Tugune Shunskuptang Delte Star Yergasika, Jongdar Saltenok, Aga Shwanilene Nasulton Kasata Delchat Sanazat.

0: तू गों समासो दासंग इश्रय त्रिंग चुरुली सलकन इलु बो चांगरिक सन मातो ngaje आकाशवाणी लेनी ज्योत पितो छु चोल दु नास कर्मा जिप छु छादो कसता आकाशवाणी श्रीनगर ने उर्दिन न चुल अंत सिंह ने तपसरा सनाता
1: मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो मां बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: के तौर पर देखा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स उन लोगों के लिए चेतावनी है जो स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं, क्योंकि इस फोर्स ने हमेशा अपराधियों और आतंकवादियों को खोजकर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया है।
1: इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाईयों पर मुश्तमिल खबरें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पार करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
0: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नजीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: देखिए, मंशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शऊर पैदा करें ताकि मंशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बांडीपुर और बारामूला में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान समाज को मनुष्यत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। पुलिस ने बारामूला और सोपोर में खशखाश की काश्त को तबाह कर दिया। बारामूला के जानपासपुरा इलाके में रियाज अहमद खान नामी ड्रग स्मगलर की एक दुकान को मसमार कर दिया गया। अनंतनाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 मुकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलवामा में मुख्तार अहमद राथर नामी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अल रहीम ट्रस्ट नामी तंजीम के अहतमाम से डिग्री कॉलेज गांधरबल में मुनाकद हुआ प्रोग्राम असलुक आलो आज इख्तिताम पसीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान शिरका को मनुष्यत की बिद्दत, माहौलियात की पाकिजगी और सामाजिक दर के बारे में जानकारी दी गई। इख्तितामी तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद तरखशान राबी ने भी शिरकत की। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: हमें आज समाज में जम्मू कश्मीर में किस कदर बुराइयां बढ़ गई हैं और जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को, नौजवान को, बुजुर्ग को, सोशल एक्टिविस्ट्स को, गवर्नमेंट को, सभी को एक होकर इन बुराइयों को खत्म करना है। सबसे ज्यादा जो बात अभी मंशियात की हो रही है उसमें ऑनरेबल एलजी ने ये एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया है, उसके साथ पे ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे और भी परेशानियां यहाँ पर है, जैसे कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारी पेड़ों की कटाई बेतहाशा हो रही है।
1: बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक गोयल ने भी इस मौके पर मनुष्यात के इस्तेमाल के मुजर असरात को उजागर किया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में अदबी मरकज कमराज के अहतमाम से मरकज के सदर दफ्तर कांसपुरा बारामूला में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकद हुआ। मुकर्रे ने नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा कि उन्हें बासलाहियत मुआशरा तामीर करने में शराकत दार बनना चाहिए। उससे पहले मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में माहाना एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनाकद हुई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने हल्के इंतखाब गांधरबल का दौरा करके वहां 40 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनमें सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला भी शामिल है। वजीर आला ने जिला अस्पताल गांधरबल में बोन डेक्सा स्कैन मशीन और फाइब्रो स्कैन मशीन का भी इफ्तिताह किया। ये आलात एचडीएफसी बैंक की सामाजिक कॉरपोरेट जिम्मेदारी के तहत नस्ब किए गए हैं। उन्होंने वहां मुख्तलिफ कलीदी नौयत के तरक्याती इकदाम का भी जायजा लिया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला ने कहा,
4: गांधरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांधरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कोशिश की जा रही है कि गांधरबल को सही माने में को डेवलप किया जाए और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं।

0: तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है।
1: इधर वजीर आला ने श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में 2,25,00,000 रुपए मानियत के तिब्बी आलात को आवाम के नाम वक्फ किया। उनके हबरा नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू, एमएलए जदीबल तनवीर सादिक भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज तुलमला गांधरबल में माता खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी और वहां श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मेला खीर भवानी के लिए किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। बागी वजीर मौसुफ ने मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने आलिया पर भी हाजिरी दी, जहां उन्होंने अकीदतमंदों के लिए दस्तियाब बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। तालीम और समाजी पायदारी खुशहाल मुआशरे की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। तरक्की पजीर अकवाम तालीमी मंजरनामे को जदीद और मुस्तहकम बनाने पर खसूसी तवज्जो देती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हलीमा सादियानी डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथिर के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान कहा,
2: सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद, उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी वही नहीं पूरी करनी आती है, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है।
1: आज मदर्स डे यानी यौमे मादर है। ये दिन हर साल मई की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में माओं की शफकत और उनकी कुर्बानी के एतराफ में उनके तई स्पास गुजारी का इजहार करने का एक मौका है।

0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आजकल के मौसम में वादी में रूसी सफेदों से गिरने वाले रुई के गालों से लोगों को निजामे तनफुस में एलर्जी और इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। माहिरों ने लोगों खासकर बुजुर्गों को मशवरा दिया है कि वो इस सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस सिलसिले में बुजुर्गों के तबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: इस मौसम में दरख्तों और घास का पोलन हवा में ज्यादा होता है, जो बुजुर्गों में एलर्जी, खांसी, छींकें, आंखों में आंसू और जलन और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। अस्थमा और एलर्जी वाले बुजुर्ग को खास एहतियात की जरूरत होती है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मा जरूर पहने और बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा धो लें। खिड़कियां बंद रखें, धूप और तेज हवा में कम निकलें, पानी ज्यादा पिएं और डॉक्टर के मशवरे से अपनी एलर्जी या इनहेलर वाली दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर सांस ज्यादा फूले या वीजिंग हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता करें।
0: गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से बड़गाम जिले के बदरनमागा में जारी समन बलनामी तीन रोजा अबरी मेले के दूसरे दिन आज प्रोफेसर फारूक फयाज की सदारत में एक निशस्त मुनाकद हुई। इस मौके पर डॉक्टर नजीर आजाद, शमशाद करालवारी और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने अरबी मकाले पेश किए। आज प्रोग्राम के दौरान एक महफिल मुशायरा भी मुनाकद हुई। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: आज के इस दिन की खास बात यह थी कि आज मुबाहसे में शुरका ने हिस्सा लिया और कुछ अच्छी बातें अदब के हवाले से, हमारे अदबी मंजरनामे के हवाले से सामने आए और बहुत सी तजवीजें भी उन्होंने रखी। गुलशन कल्चरल फोरम पे एक जिम्मेदारी सौंप दी कि वो इन बातों पे अमल करे और आगे बढ़ाने में कश्मीरी जुबान अदब के हवाले से जो काम फोरम कर रहा है उसको आगे बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें।
0: अब चंद खबरें खेलों से। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर वादी और गोल्फ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता है और वादी के गोल्फ कोर्स मुल्क के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह के गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मुकामी गोल्फ खिलाड़ियों के लिए तहरीक बख्श होंगे बल्कि इससे यहां की सियाहत में भी चार चांद लग जाएंगे। वजीर तालीम सकीना इतू ने आज कुलगाम जिला के दमहाल हाजीपुरा में वली मोहम्मद इतू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटो के मुताबिक इस टूर्नामेंट में जिला की 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वजीर मौसूफा ने इस मौके पर DH पुरा जोन के 109 स्कूलों में खेलकूद का सामान तकसीम किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने श्रीनगर से स्वामी विवेकानंदा अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए फुटबॉल टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 4 से 9 मई के दरमियान मुनाकदा कुल हिंद बैन यूनिवर्सिटी वोशु चैंपियनशिप में मुल्क भर से 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले जायदाज 1600 एथलीटों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में आयरा चिश्ती ने 52 किलोग्राम जुमरे में जबकि अंसा चिश्ती ने 56 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किए। श्रीनगर के बिमना इलाके की रहने वाली ये दोनों बहनें लॉलिक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की नुमाइंदगी कर रही थी। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मशरक वस्ता के बहरान का पायदार हल बातचीत और सफारती गुफ्तगू से ही मुमकिन है। उन्होंने UNO के सरबराह से अपील की कि वो इस बहरान को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करें ताकि आलमी सतह पर रोनुमा हुए इस जंग के असरात को खत्म किया जा सके। प्रदेश BJP के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने जम्मू नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षण कैंप से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए तंजीमी तरबियत नागुजीर है। मट्ठी जम्मू में आज ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBS और अकलौती तंजीमों की तरफ से यूथ कन्क्लेव का इनेकाद हुआ जिसका मकसद नौजवानों को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के नजरियात से जोड़ना है। इस मौके पर शिरका ने एक करारदाद पास की जिसके तहत 28 जून को जम्मू में दोबारा एक रोजा यूथ कन्क्लेव मुनाकद किया जाएगा। दरियाए सिंध में पानी की बढ़ती सतह को मद्देनजर रखते हुए गांधरबल पुलिस ने आवाम के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वो दरियाए सिंध के किनारों पर जाने से एतराज करें। खबरनामे के इख्तिताम से पहले अब मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलई आफ्ताब सुबह 5:33 और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं। सीएनजी आधारित व्यवस्था

0: को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
0: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा

0: राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स

0: बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion, and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
1: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
1: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
4: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
5: वी हैव सर्टनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड

0: इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
0: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वजीर आजम ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
0: आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिन सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअसर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदामात और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीने वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफ़ीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मबलकत बनाया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मबलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मबलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।

0: साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नीरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तोसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गजे आकाशवाणी लेने जुत सानी चुचोत गुना फेचा दुख का सता दांग चोकलम सरे धर्मा सेंटर नंगा लद्दाख जुले नंगा नाचो से नजबाब से स्कोरला इंगिंचिगे ट्रोसलिंग जिग शिक्योते इनपिन इस स्कोरला रेडियो रिपोर्ट डिग्रीम जिग सनजत डिग्रीम पुलकन रिक्सन नुरबू
2: Degrim Sankal Langes da Julie Langes Dang Yana Childa Meses Urgui Jaga Cholamsari Dharma Centeri Tsokskananga Ladakh Ujung Nazde Tang Ladakh Gonpa Tsokduguni Zungdela Taldik Zate Past Present and Future of Buddhism in Ladakh Yana Ladakh Si Yulinanga Nangchostang Tei Das Maons Patang Taltawe Nasbab Juste I Gorganika Ninchigi Drozlingik Skyot Yang Dang I Zadgues Kaps Tsokspenanga Ladakh Ujung Nazde Tronsi Chenmo Kujab Ashish Kundra, Sosmenanga Skunon Svetsula Tusa Zaz Yang, Ladakujungazde, Skoriangstang Yontani Skori Tronsi Guntang, Skabje Dukba Tuksa Rinpoche Sospe, Ladaksi Kazwang Gen Tupsan Paldan, Himis Kachen Sevan Rigzin, Mahabudi Lapsonpa Gen Sangasenar Sospe, Ladaksi Gonka Gunne, Kanpo Geshestang Gendun Sunma Landyastang, Ladaks Nansorsang Gonsors Guni Tipagun Sospe, Mimans Guntang, Loptagan Sose Gergantang Loptogun Juxte Yotpin. Langas yang zatgue gozuk sospes kunun sue charne marme jalchet zachestang yampo lada gonpa sordi tipa gen dorjestan deni sospa argasis mishat salad zat yang testingne skiabje dukpa tuksa rinpoche chogis sospa ninchigi drozneng se migis korla sospa sungshat zat.
3: First of all, I really appreciate your effort and especially the UD administration who have encouraged us to organize this very program even today, which is very very important. As everyone knows that we have been since the relic has arrived till today, we have been organizing many different kind of programs, you know, all are related with culture, Buddhist teaching or many other things. So today we are here gathered here in one of the most important topic, which as you know, past and present and the future of Buddhism in Ladakh. As everyone knows, Buddhism has been playing a very important role here in Ladakh, not only just as a spiritual, but also for the community, for the society, for the peace and prosperity for the region. And all this happened. Today is the day to remember all the hard work and offer our gratitude to all our past

0: eminences, Rinpoches, masters, teachers, scholars who have worked very hard to preserve this Buddhist teaching and tradition. And presently, I can say still, Buddhism is playing a very important role, and also at the same time facing lots of challenges also.
1: Lanyes yang testinget sur space caps stonba thube mangbe jingshel rinpoche ladakh la yukse caps sanges kutin chani chospo dakse tuzla zamningina chamshi khachanin yang igun mimangs gunina nga khap goshespo khachan inok mola jachestang drolling si miji tang delpe sospa sungshat saladatin jiktang sur space kunon swe ladang ujung hasde tonsi chen mos kujaps ashish kundre izuk mola jad
2: sabse pehle to main aapko bahut bahut is baat ki बधाई देता हूँ कि पिछले 9 दिनों से बुद्ध भगवान के अवशेष लेह में पधारे हैं, और जैसा कि यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध खुद ही लेह में पधारे हैं, और जितनी बड़ी तादाद में हर रोज़ सुबह हम देखते हैं, मेरे पास रिपोर्ट आती है, मैंने खुद भी देखा, हज़ारों लोग सुबह 6 बजे से वहाँ लाइन में लगते हैं कि हमारा दर्शन हो जाए, और उसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग हैं। ये आस्था है, आस्था है भगवान बुद्ध के प्रति। और मेरे समझ में लद्दाख की बुद्धिज़्म जो वो बौद्ध धर्म है उसमें ख़ास अहमियत है। यूं तो जो बौद्ध धर्म है पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है और जन्मा हिंदुस्तान से, लेकिन उसकी आस्था जो एक तिब्बतन रीजन में है, पूरे यहाँ पे है, आगे नॉर्थ ईस्ट में हमारे अरुणाचल में है, उधर भूटान में है, मंगोलिया में है ऊपर, और ईस्ट एशिया में है, और हिंदुस्तान में बाकी जगह पे भी बौद्ध धर्म के को मानने वाले के अनुयायी बहुत सारे लोग हैं। आज का जो टॉपिक है आप सब लोग चर्चा करेंगे, सब विद्वान लोग बैठे हैं, कि लद्दाख के अंदर ख़ास तौर पे जो बौद्ध धर्म का हिस्ट्री क्या रही, आज की डेट में बौद्ध धर्म जो है वो कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे क्या स्वरूप ये लेने वाला है। कल हमने महाबोधि सेंटर में एक इंटरफेथ डायलॉग में हिस्सा लिया, जहाँ संगसेना जी ने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था। सभी धर्मों के लोगों ने यही बात रखी कि जो भगवान बुद्ध की एक टीचिंग है, जो कि कंपैशन, पीस, मिडल पाथ, शांति का संदेश, तो पूरे दुनिया भर में जो शांति का प्रतीक अगर माना जाता है किसी, भगवान बुद्ध को माना जाता है। चर्चा में से कोई अच्छी चीज़ ही निकल के आएगी जब सब लोग सब विषय पर बात करते हैं। हिंदुस्तान की रिवायत रही है वाद विवाद संवाद, आज मुझे लगता है वही मौका है, हर कोई अपनी बात रखेगा, कोई उससे एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा, लेकिन जो निकल के आएगा वो अच्छा ही निकल के आएगा। धन्यवाद।
1: Langes drolling si sourcing tangpe tashis gozugi zagwe juk uzdu azatin jiktang sourcepa turjeche sungshat asal azatin jiktang lada ujung hasde skorian stang shejik si skori laskun si director skujab siring paldani sourcepa turjeche sungshat asal azad.
3: I, on behalf of UT administrations and Ladakh Gonpa associations, and it's my proud privilege to present a word of thanks on this occasion of one day conference on past, present and future of Buddhism in Ladakh. On the onset, I express my deep gratitude to His Eminence Thugsar Rinpoche for his guidance and for his support in organizing this seminar. And also thanks Shri Ashish Kundra, Chief Secretary UT Ladakh, for his support and organizing this seminar. And also thanks the dignitaries on the dais for sparing a valuable time out of their busy schedule and for gracing this occasions. And I also take privilege to convey my heartfelt gratitude to monks and nuns came from the different monasteries of Ladakh, and also thanks the people who come from different part of Ladakh for attending this conference, and also thanks the students come from the different

0: चिन्हतेने ता संगेस स्तनबा पोडला काजु तारका जकांबो चिवा चिन्ह ता स्टो खडम स्तनबा गातार गो आ स्तनबा गातार गो काबो गाता चना मेजोन नमसुंग इसकाबला नपा चोगे संतन चिसों बेतन गाता ठीर रपचन ते सुंग इसकाबला तने लादा लचो नाचो तारका ना नाचो मातारका ते लादा लचियो काजना मिल्युत गानमा ओनाम्यम पोयोत कानी तेना लालू सोचे ना तेना मोंस्ता तेना एजुक चोचे सिमानी देम्बा संगे की सुन काबे ना ते योत कान दु ते यो तारते मे कहना ता ते जाने माने हालम जि माने एजुक चोचे सफाल माने लादा सिना हालम पोला दर्गिन स्कोचे सा ते सोल बा हालम योत ति मिलु ने ला गातार गानमा ओला तारो गाता ते तु ला तारुम गल्दुस मे नो फाइल चोतार चोरप जारो ग्यारप्स संगानला चोरप्स चोरप्स स्कबला योते मिरुवा ते से ने पोदला ते ने स्तनबा गातार बो लांगतार में स्कबला छचंग माने चामेत सोंग बेस्टिंग ने ते ने नारिस ने ग्यूत ते ने लालामा इशो चाची बोत को ने पोला गानबा स्तनबा गातार बो जुक से तार तो पता ते वो ते ने नाजमा तुक तो ता ते वो स्तनबा हर सोचे ना यहां से तार से पिया थाप से चोगो सोंग और पसंद ते ने खोंग जी ने यहां स्तंभ सोचेज ला थाप जाता ताते जाने तने कौन है तास्तंभ सोचेज ला थाप जाला ला गाला संज्ञा से सुंग बोचीन संज्ञा से कास्तन ते उन हागो होता ते वे पिया तने रिपाचा ने चुवू निशु तासी डाम से तने खाचे चोगा लोबजों का काल पिन जुआना ताते ना ने निशु तासी न्यांपो चोक्षी का काल का निंचे मिरु चिया खोरा हरंग खोरा चिपो खोरा जबसी जिदा लमगुस पासे कंसुम न पोस्को दो ते तोला रिंदे रिंदे चोस्ते तने दिजुगी खाचे अलग जों काला जात का ताई निशु तासिक काल का पते दाना तने निशु तासिक के तासिक लोग जों थोंत थारकेल थोंत लोका हजन लोगिस को नेना ते लोकान मसाला मिलु ताते नाने लोचेन रिंचेन जंपो ना तने लोचु मोगले पेशरा पिसका थारकेल थोंत तने गरी जा लोका ताते ना ना ताने पा तंबा चिजार के स्कार की लोटावा छोटो गिर पावो लमान लोटावा रिजन जापो ना ताल लमान लोटावा रिजन जापे नमतार ग्यास पाता थोबा मेट का नमतार डिंगो ना ताने नमतार चुंग तांगा तां जल गियो ताने ते वो करा मोडलो भी दिए जात का ना मोडलो भी दिए जात के योत पसंद ते वो ताने गा तां कुंग तुक कुंग तकपो दां कुंग तुंबा देबा तक्चा ते वो सा यहाँ पे इस तरह लाभों चुस्ते डिस्काउंट माने मंगपो यों लो ते वो चीज़ चीज़ लाभों चौसिया सॉन्ग तांस पसंग गाता ना ते ना नोटुल माने मंगपो जोत का ये जो जिक्स ते योद में चीज़ ताते चौसॉन्ग पसंग गाता माने लम्रिम संग में ना जोजे पदा ने ती शपोल ला फेब्से दान डेल्टे लमन लोटा मोचो ते क्याला तो तो पक्का चन ते ना नो टुल माने मापो सोंगान मुना ता मोचे जे ता
1: यांग टेस्टिंग ने चोसवा उजुंग नाम पे रिग्नास सुग्लर लोमियर खांगे लोपटुक गेचुन जिगमेट चोजोलिस लदासे युलिनांगा दक्से तुसला नांचोसी नाजबास इ गोर्गियानिका चोसपा मोला जात
2: तेने गोमा आता रंगम थपसे चेरो चुसम गुपचु कोप्तु ने लो रंगम थपसे तेने तेने भाला तेने तेने तुसना जेब जे बकुला रिम पछि ओके तेना तेने नांचो ता आता लदास ने ने योता मेना फसवा जे जुक्स्ते नो आता लदास से तेने आता छमे ता आता छमे छप जुक्स जुक्स्ते ज्या तेने ते जाने नांचो से नमा लस लस गुलशंते पिसपे लजा तेने यंग टेस्टिंग ने तेने आता लदा नंबर 14 बछु गजा तेने 1931 ने गो तेने तेने 38 सपा मिंग गुंजे संस्कार पा गुरक्या पा इनया नंगते नस्ता फिया ते समय लसगुल मा हंटे रिक जोस ते तो नले तेने ता जिनो नि सोंग नि फलास्ता ना गति चलो नि सोंग ने नि सोंग चुबजी गुनि बार ला तेने लदा सिनेमा ngata e mane mandang jante sengan me luk gunyam po nyam pa tene gonpa so so so so na ko ra ra e gonpe luk shi ka zuk shi ga yo yang te gonpa gone na nga chwa chulen ka so shi chok chok o shi te samma gyasen gyasen cha na nyam po tene ngata e chisok se mi chisok se chang nam chos po ke te nam mani ta i o mani important jik duk khachan jik duk sirkan bo ha gos to le tene te ka ni ke te na ngata tarum chok shi ne zuk shi yong duk ka o pilok ne mi sang ma mam cha la da sa yo na nyam po la da se nam chos pe ka zuk chos to ngok चिरों की सोंगों ने ना पीना गाता है छोए थुंसकेन बोके तो ना मांग चाहते ने जून के स्टेज कब से जून के स्कूल ना तेरे मोनेस्ट्री गाइड यंग ना गाता है